नमस्कार, आप सुन रहे हैं, ये आकाशवाणी एडलेड है और आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। दोस्तों, आज 2 सितंबर 2026 बुधवार का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं। और दोस्तों, आज एडलेड का तापमान अभी बाहर 13.5 डिग्री है और आने वाले जो दिन है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि अब जो है हम स्प्रिंग में एंटर कर चुके हैं, जो कि सबसे ब्यूटीफुल वेदर रहता है, क्योंकि एकदम मिक्स रहता है, ना ठंड ना गर्मी। तो इससे पहले कि हम जो है गर्मी के महीने में एंटर करें, स्प्रिंग का पूरा मज़ा लीजिए, गार्डनिंग कीजिए, क्योंकि ये टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर बहुत है, पानी देने की ज़रूरत नहीं, तो इस वक्त जो भी सीड डालेंगे वो बहुत अच्छा आपके साथ रहेगा समर के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये कार्यक्रम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं, क्योंकि अब हम त्योहारों के समय में आ चुके हैं। दोस्तों, अगस्त का महीना जा चुका है, 15 अगस्त और रक्षाबंधन का त्यौहार बना चुके हैं और आने वाले कई त्यौहार हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर दूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं और साथ साथ जो अभी नेपाल में एक बहुत बड़ी जो ये एवलांच आया और जो दुर्घटना हुई इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो आने वाले त्यौहार हैं उनके बारे में। अब सबसे बड़ा त्यौहार जो दोस्तों आने वाला है वो है कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि 4 सितंबर को शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, ये त्यौहार जो है भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन श्रद्धालु दिन भर व्रत यानी उपवास रखते हैं और रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद पालने में विराजे बाल गोपाल की पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं। मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और अगले दिन कई जगहों पर दही हांडी का उत्सव का आयोजन होता है। दोस्तों, एडलेड में भी ये बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, खासकर इस्कॉन टेंपल जो कि प्रॉस्पेक्ट में ली हंट स्ट्रीट पे है, काफ़ी धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। और अब तो एडलेड में कई सारे मंदिर हैं जिनमें ये मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। तो उम्मीद करूँगा कि आप अपने परिवार के साथ जाकर इसका पूरा आनंद लेंगे। तो चलिए अभी सुनते हैं एक भजन।

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032201. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: दोस्तों बात करते हैं अब और त्योहारों के बाद. अब दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के होते ही उसके बाद फिर 14 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार है. ये जो त्यौहार है ये बुद्धि समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्मोत्सव का प्रतीक है. अगर इसके महत्व की और विधि के बारे में बात करूं तो इस दिन घरों में और बड़े बड़े पंडालों में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है जिसको कि गणेश स्थापना कहते हैं. बप्पा को उनका पसंदीदा भोग मोदक और लड्डू चढ़ाया जाता है और ये उत्सव अगले 10 दिनों तक चलता है. तो दोस्तों यहाँ पर भी एडलेड में भी काफ़ी जगहों पर ये उत्सव मनाया जा रहा है. तो उम्मीद करूँगा कि ये भी आप परिवार के साथ ज़रूर अटेंड करेंगे. और दोस्तों इसके बाद जो है अनंत चतुर्दशी जो कि 25 सितंबर शुक्रवार के दिन है, ये जो है ये 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है जिसे गणेश विसर्जन भी कहा जाता है. तो इस दिन जो भक्त होते हैं वो बड़े भारी मन से गणपति बब्बा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ भगवान गणेश की मूर्तियों को पवित्र जल निकायों जैसे नदियाँ या समुद्र या तालाबों में विसर्जित करते हैं. इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा भी की जाती है और कलाई पर अनंत सूत्र यानी कि धागा बांधा जाता है. उसके बाद दोस्तों 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक पितृपक्ष का शुरू होता है. ये 15 दिनों की अवधि है जो पूरी तरह से हमारे पूर्वजों यानी कि पितरों को समर्पित होती है. इन दिनों में हिंदू परिवार अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करते हैं और माना जाता है कि ऐसे करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं. दोस्तों इस दौरान कोई भी नया या शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश शादी नहीं किया जाता है. तो और दोस्तों इसके बाद तो जैसे ही ये पितृपक्ष का समय पूरा होता है उसके बाद शरद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे. 11 अक्टूबर से शुरू होंगे जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है वहाँ से शुरू होते हैं. और दोस्तों 20 अक्टूबर दशहरा आने वाला है जिस दिन भगवान राम की रावण पर और माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है. दोस्तों उसके बाद दीपावली 8 नवंबर रोशनी का सबसे बड़ा त्यौहार इस दुनिया का और माँ लक्ष्मी की पूजा. और फिर 15 नवंबर छठ पूजा जिसमें कि सूर्य देव और छठी मैया की कठिन उपासना होती है. तो दोस्तों क्या कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर और नवंबर आने वाले 3 महीने भाई हमारे तो बहुत बिजी होने वाले हैं. और फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं एडलेड में हैं तो उसके बाद तो फिर क्रिसमस का त्यौहार शुरू हो जाएगा तो फिर एक अलग ही चहल पहल. तो हमारे लिए तो दोस्तों हम तो पूरा जैम पैक्ड होकर बैठे हैं इस वक्त दिसंबर तक. तो उम्मीद करूँगा कि ये आने वाले 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत सुखदायी होंगे और आप लोग इसमें बहुत परिवार के साथ इंजॉय करेंगे. चलिए अब सुनते हैं ये गाना.

0: seeking a genuine assortment of spices and authentic Desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into Desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 0883710051.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भारत के दोस्तों पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के मैदान पर अपने शानदार खेल से लाखों दिलों को जीता है, लेकिन अपने बेहतरीन खेल के अलावा उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ऐसी बात भी कही है जो बच्चों के लिए प्रेरणादायी हो सकती हैं। माता पिता उनकी इन सीखों को बच्चों को समझाकर उन्हें सफलता और असफलता को सही तरीके से स्वीकार करना सिखा सकते हैं, साथ ही बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का जज्बा पैदा करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों में बात करते हैं कि धोनी ने ऐसा क्या कहा। वो कहते हैं कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम का दबाव हम पर हावी हो जाता है और मन में यही चलता रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर हम गेम नहीं जीते तो क्या होगा, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। इसके बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। हम अपने कंट्रोल में रहने वाली चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें मनचाहा रिजल्ट मिलेगा, और अगर मनचाहा रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने प्लान को चेंज करेंगे और उसे एक बेहतर तरीके से लागू करेंगे और खुद को फिर से साबित करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों ज़रूरी है कि अच्छे रिजल्ट का दबाव ना बनाए। जैसे MS धोनी की इस बात से माता पिता को ये सीख मिलती है कि बच्चों पर हमेशा अच्छे रिजल्ट का दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर बच्चा हर समय नंबर, जीत या सिलेक्शन के बारे में ही सोचता रहेगा तो उसके मन में असफल होने का डर बढ़ सकता है, जिससे वह अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके बजाय उसे अपनी मेहनत, अपनी प्रिपरेशन और उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो उसके कंट्रोल में है। और परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचना आपको कभी रिजल्ट नहीं दिलाता। हाँ, टारगेट दिमाग में होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिंदगी में उन छोटे छोटे कदमों का ध्यान रखें, जैसे हमें क्या करना है और हमसे क्या करने की एक्सपेक्टेशन है और हम इसे अलग और क्या कर सकते हैं। यह चीज़ हमें अपने टारगेट हासिल करने में मदद करेगी। और वो कहते हैं कि छोटे छोटे लक्ष्यों पर फोकस करके करना सीखना चाहिए। जैसे इनकी ये बात माता पिता को यह सबक देती है कि बच्चों को सिर्फ अंतिम नतीजे पर ध्यान देने की बजाय वो छोटे छोटे लक्ष्यों पर फोकस करना आना सीखना चाहिए। बच्चे के मन में अपने टारगेट ज़रूर होने चाहिए, लेकिन उसे ये भी समझाएं कि उसे हासिल करने के लिए उसको वो रोज़ क्या करना है, उसकी क्या डेली एक्टिविटीज़ रहेंगी और अपनी तरफ से वो और क्या बेटर कर सकता है। तो इससे बच्चा परिणाम की चिंता करने की बजाय अपने प्रिपरेशन और अपने जो प्रयास करेगा, जो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। और वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंट जो है, एक कॉन्फिडेंट लड़का उस टैलेंटेड लड़के से कहीं बेहतर होता है जो हमेशा खुद पर सवाल उठाता रहता है। तो धोनी के इस विचार से पेरेंट्स को बच्चों के लिए एक ज़रूरी बात सीखनी चाहिए कि बच्चों में टैलेंट के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाना भी ज़रूरी है। अगर बच्चा अपनी क्षमता पर भरोसा ही नहीं करेगा और हर कदम पर खुद को ही क्वेश्चन करता रहेगा तो उसका टैलेंट भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाएगा। इसलिए माता पिता को बच्चों की कमियों पर बार बार ध्यान दिलाने की बजाय उनकी खूबियों को पहचानने और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। और धोनी कहते हैं कि मेहनत कोई विकल्प नहीं है। मेहनत, वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी यही कहते थे और वो भी यही कहते हैं और उनकी आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी कि मेहनत का, देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। तो दोस्तों, और वो ये भी कहते हैं कि बच्चों को मेहनत की अहमियत समझाएं, इसलिए इस बात में पेरेंट्स के लिए एक ज़रूरी सीख छिपी है कि बच्चों को सफलता पाने के लिए मेहनत की अहमियत समझानी चाहिए। उनको, उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि टैलेंट या दूसरे शॉर्टकट की बजाय कंटिन्यूस हार्डवर्क और एफर्ट जो है उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। तो इसलिए बच्चे ये बात भी जो है ना भूलें और हमेशा कंसिस्टेंट अपनी मेहनत करें और रिज़ल्ट उनको जो है वो ज़रूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गाना।

0: setup of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road, Prospect, or call them on 8342 3923. LSM & Co, a sponsor of this program.
1: दोस्तों, अभी recently एक बहुत बड़ा जो है हादसा हुआ है. जैसे कि पहले भारत में हुआ था, झील टूटी थी तो केदारनाथ डूबा था 2013 में, और अब पहाड़ टूटा है तो जो है वो नेपाल डूबा. तो हिमालय में क्या बदल रहा है दोस्तों, इसी बारे में बात करेंगे. सबसे पहले नेपाल के बारे में आपको बताता हूँ. नेपाल जो है दोस्तों आधिकारिक तौर पर एक संघीय फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, जो कि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में एक भूमि से घिरा देश है. ये मुख्य रूप से हिमालय में स्थित है, लेकिन इसमें भारत गंगा के मैदान के हिस्से भी शामिल हैं. इसके नॉर्थ में तिब्बत की सीमा, और साउथ और जो ईस्ट है और वेस्ट में भारत है. और नेपाल के भूगोल में, ज्योग्राफी में भारत की काफ़ी विविधता है. यहाँ उपजाऊ मैदान हैं, यहाँ पूरे जो हैं वनों से भरी पहाड़ियाँ हैं. दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 नेपाल में ही हैं दोस्तों, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है. और नेपाल एक बहुजातीय यानी कि मल्टी कल्चरल, बहुभाषी, बहुधार्मिक राज्य है. और इसकी नेपाली इसकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है. काठमांडू देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है. तो दोस्तों, नेपाल नाम पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के वैदिक काल के ग्रंथों में दर्ज किया गया है. प्राचीन नेपाल में हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी, जो देश का प्रमुख धर्म था. और ईसा पूर्व के मध्य में जो है 5th और 6th सेंचुरी के बीच में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो है साउथ नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था. और जो है नॉर्दर्न नेपाल के हिस्से तिब्बत की संस्कृति से जुड़े हुए थे. और केंद्रीय रूप से स्थित काठमांडू घाटी भारत और आर्यों की संस्कृति से जुड़ी हुई है. और प्राचीन सिल्क रोड की हिमालयी शाखा पर घाटी के जो बिजनेसमैन्स का वर्चस्व था. और 18वीं शताब्दी तक गोरखा किंगडम जो था उसने नेपाल के यूनिफिकेशन के लिए काम किया. और शाह राजवंश ने नेपाल के राज्य की स्थापना करी, जो शाह डायनेस्टी थी. उन्होंने ये किंगडम ऑफ नेपाल को एस्टेब्लिश किया, और बाद में अपने प्रमुख राणा राजवंश के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जो है गठबंधन किया. और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, नेपाल वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड. तो नेपाल जो है 1951 से एक संसदीय लोकतंत्र है. और दोस्तों, इसमें जो एक नेपाल में एक गृह युद्ध हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप 2008 में एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना हुई, जिसने दुनिया की आखिरी हिंदू राजशाही को समाप्त कर दिया, जो कि वर्ल्ड की लास्ट हिंदू मोनार्की थी. तो 2000 में अपनाया गया नेपाल का संविधान, देश को 7 प्रांतों में विभाजित कर एक संसदीय गणराज्य के रूप में स्थापित करता है. और दोस्तों, अगर नेपाली सशस्त्र बल जो है वो दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में 5वां सबसे बड़ा है दोस्तों, नेपाल की जो मिलिट्री पावर है. और नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है. और दोस्तों, नेपाल में भारत के बाद दुनिया में हिंदुओं की सबसे दूसरी संख्या पाई जाती है. अब दोस्तों, बात करते हैं ये जो अभी रिसेंटली जो ये एक तबाही हुई हिमालय रीजन में, इसके बारे में बात करते हैं. अब दोस्तों, हिमालय में सिर्फ आसमान से बरसने वाले पानी की कहानी नहीं है. कभी कभी बारिश के साथ ग्लेशियल झील टूट जाती है, तो फिर कभी पहाड़ का बर्फ और चट्टानों वाला हिस्सा अचानक से नीचे आ जाता है. और जैसा कि मैंने बताया था कि जून 2013 में केदारनाथ और उत्तराखंड में भी ऐसी ही बड़ी तबाही हुई थी. और अब 13 साल बाद यानी कि 26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने एक बार फिर से हिमालय के इस खतरे की तरफ ध्यान खींचा है. नेपाल में दोस्तों अभी 1 सितंबर तक ऑलमोस्ट 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें कि अभी 4,000 के लोग अभी भी लापता हैं, और जिसमें करीब करीब 12,000 लोगों को बचाया जा चुका है, और करीब करीब 93,000 लोग अभी भी इससे अफेक्टेड हैं। बचाव अभियान जारी है और ये आंकड़े बदल भी सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों दोनों ही घटनाओं में पानी और मलबे ने भारी नुकसान किया, और लेकिन बाढ़ शुरू होने की वजह अलग थी। 2013 में अगर केदारनाथ के बारे में बात करूं तो जून 2013 में उत्तराखंड में लगातार कई दिनों तक बहुत बारिश हुई थी, और फिर बारिश ने कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति पैदा की, और पहाड़ों पर जमा बर्फ भी पिघली और पानी का बहाव बढ़ गया। तो इससे लगातार बारिश और बर्फ पिघलने से झील में पानी बढ़ गया था, और झील को रोकने वाली जो नेचुरल मिट्टी और पत्थरों की दीवार कमज़ोर हुई और टूट गई, और इसके बाद झील का पानी नीचे आया। इसी तरह दोस्तों अगर बात करूँ तो नेपाल में भी 26 अगस्त को नेपाल के रसुआ ज़िले में भोटे कोशी नदी के इलाके में अचानक तेज़ बाढ़ आई। इसका असर नदी के रास्ते नीचे के कई इलाकों तक पहुँचा, और कई दूसरे ज़िलों में भी इसका नुकसान हुआ। बाढ़ में सड़कें टूटी, पुल टूटे, और कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुआ, और अभी भी कई लोगों के सुरंगों में फंसे होने या लापता होने की आशंका है। तो नेपाल की घटना को भी सिर्फ बारिश से आई एक सामान्य बाढ़ की कहानी नहीं है। शुरुआती वैज्ञानिक जांच में ऊंचाई वाले इलाके से बर्फ और चट्टान के बड़े हिस्से के अचानक टूटकर नीचे आने की बात सामने आई है, और इससे उसने जो नीचे आई तो नदी के बहाव को उसने प्रभावित किया, और इसके बाद पानी, पत्थर, बर्फ और मिट्टी का तेज़ बहाव नीचे की तरफ गया, और इसकी वजह से नदी के आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी। तो अगर आप साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, ये हिस्सा करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई से आया, और करीब 22 किलोमीटर की दूरी केवल 7 मिनट से कुछ ज़्यादा समय में इसने तय करी। यानी इसकी एवरेज अगर आप स्पीड की बात करें तो ये 167 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया था। तो आप सोचिए, और शुरुआती रिपोर्ट में तो दोस्तों नेपाल की इस घटना को ग्लेशियल झील टूटने से भी जोड़ा गया, लेकिन अभी इसमें साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, और इसमें अभी जो है साइंटिस्ट जो है इस पूरे क्रम की जांच कर रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ दोस्तों वो काफ़ी ट्रोमेटिक था उन परिवारों के लिए, और अभी ऑस्ट्रेलिया से भी करीब करीब 35 से ज़्यादा जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं जिनका अभी कुछ पता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का जल्दी पता लगेगा, और वो अपने जो परिवारों के साथ जल्दी जुड़ेंगे। चलिए अब सुनते हैं ये

0: Baby, just come down and get me.
1: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide, Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659 or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
2: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ. अब दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि कोई भी जो बीमारी होती है दोस्तों वो अचानक से नहीं आती है. शरीर ज़रूर कुछ वार्निंग सिग्नल्स देता है और आज हम इन्हीं सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे. तो जैसा कि आपको ऐसा लगता होगा कि बीमारी शरीर में अचानक बन गई, पर यह धीरे धीरे अपनी जगह बना रही होती है. इस दौरान कई ऐसे लक्षण और संकेत भी मिलते हैं जिसे हम सामान्य समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए. यहाँ हम हर छोटी और बड़ी बीमारी से पहले शरीर में दिखने वाली उन सभी बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके समय रहते पहचानना ज़रूरी है. अब जैसे एक सिंपल है, सिर दर्द और चक्कर आना, जहाँ एक तरफ सिर दर्द का लंबे समय तक बने रहना माइग्रेन होने की तरफ का इशारा है, वहीं दूसरी तरफ हर समय सिर घूमना शरीर में खून की कमी और ब्लड प्रेशर के कम होने का संकेत है. शरीर में ये लक्षण दिखने पर उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. और जैसे कि बार बार इन्फेक्शन और घाव बन जाना, साल में जैसे 4 या उससे ज़्यादा बार इन्फेक्शन होना और मामूली चोट को ठीक होने में समय लगना बताता है कि आपकी जो प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो ठीक से काम नहीं कर रही है. और डायबिटीज़ का कंट्रोल से बाहर होना भी इन्फेक्शन या चोट को जल्दी से ठीक नहीं होने देता. तो आपके अगर इम्यून ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों चेक कराना. और जैसे सांस लेने में परेशानी, कुछ लोगों को अचानक से सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है जिससे वो सामान्य सांस फूलने की समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि ये लक्षण शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या लंग्स से जुड़ी कोई समस्या या दिल की बीमारी में बताते हैं. और हर जगह जैसे कहीं नींद लग जाना, अब आप कहीं ऐसे होते हैं जैसे बैठे बैठे कहीं पर भी लोग सो जाते हैं या हर समय नींद आती रहती है, तो ये शरीर में हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है. इसका सीधा सा मतलब है कि थायराइड जो है वो बैलेंस नहीं है. इसके अलावा शरीर में जो है पोषक तत्व जो है पोषक तत्वों खासकर आयरन की कमी से भी दोस्तों सुस्ती बहुत आती है. और अचानक जो वेट का कम होना या बढ़ना, 6 के अंदर अंदर वज़न का तेज़ी से घटना या बढ़ना, थायराइड जो है या फिर डायबिटीज़ या फिर गंभीर मामलों में कोई टीबी या कैंसर जैसी स्थिति का संकेत भी हो सकते हैं. बता देता हूँ कि जैसे वज़न कम होने के साथ और भी कई लक्षण इन बीमारियों को सटीक पहचान के लिए ज़िम्मेदार हैं. अब जैसे शरीर में असामान्य दर्द, शरीर में अक्सर होने वाला दर्द सामान्य नहीं होता. इसका संबंध जो होता है वो हड्डियों के दर्द से हो तो वो गठिया जैसी समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं. और कई मामलों में जैसे पोषक तत्वों की कमी भी थकान और दर्द का कारण बनती है. तो दोस्तों वैसे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है रेगुलर अपना चेकअप कराते रहें, और अगर ताकि इस तरह की कोई भी आपकी बॉडी में कमी हो तो उसका आपको पता लगे. और हेल्दी रहिए, खुश रहिए. चलिए अब सुनते हैं एक गाना.

दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों का आजकल दोस्तों किताबें पढ़ने में उतना मन नहीं लगता। वो पढ़ाई में ठीक है, लेकिन वो अपना होमवर्क और सब जो उनके क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो खाली समय में जो जैसे हमारी एज में जैसे जो हम कोई कहानी की किताब, कॉमिक्स या कोई कोई ऐसी कोई जन नॉलेज या कुछ और पढ़ने की बजाय बच्चे आजकल मोबाइल या अन्य स्क्रीन पर जैसे अपने लैपटॉप पर ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। तो जैसे कि आजकल डिजिटल डिवाइस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो भी प्रभावित होता है, और लगातार बदलने वाला कंटेंट उनके ब्रेन को जो है तुरंत स्टिमुलेट करता है। वहीं जैसे किताब पढ़ने में एक धैर्य और कंसंट्रेशन की जो एक ज़रूरत होती है, ऐसे में लंबे समय तक एक जगह पर किताब पढ़ना जैसे आजकल के बच्चों के लिए कितना ये थोड़ा चैलेंजिंग सा हो गया है। और ये बात भी समझनी ज़रूरी होगी कि बच्चे में ज़बरदस्ती पढ़ने की आदत नहीं डाली जा सकती। जो बुक्स हैं उनसे धीरे धीरे जो है लगाव विकसित होता है, और अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो इसका मतलब है कि उसमें लर्निंग और स्किल और डिसिप्लिन तो है, बट उसमें अब थोड़ी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि बच्चे किताबों से दूर क्यों भागते हैं? इसके पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। जैसे अब बच्चों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा डिजिटल हो गई है, इसलिए वो स्क्रीन के साथ ज़्यादा जो है कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वहीं कोई बुक पढ़ना उन्हें स्क्रीन देखने के मुकाबले आजकल थोड़ा मेहनत वाला काम लगना लगता है जैसे कि। और अगर बचपन से जैसे घर में पढ़ने का माहौल ना हो तो उनकी बुक्स में भी उनकी रुचि कम होती है। जैसे कि बच्चे अपने सिबलिंग्स या पेरेंट्स को भी देखते हैं कि अगर वो फ़ोन और स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चा भी उसी तरफ ज़्यादा उसका रुझान रहेगा। और कई बच्चों की उम्र और उनकी रुचि के अनुसार किताबें ना मिलना भी एक कारण होता है। और अगर बच्चों की पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम और होमवर्क बनाओ तो वह उससे भी जो है दूर भागने लगते हैं। और बच्चों में रीडिंग हैबिट जैसे कि मैंने बताया कि कम हो ही रही है, घर में पढ़ने का माहौल ना होना और लाइब्रेरी और आजकल जैसे बुक कल्चर की कमी है, और पेरेंट्स के पास भी वक्त नहीं होता तो वो भी कोशिश करते हैं कि बच्चा

चर्चा करें या उनसे पूछें कि इस स्टोरी में आगे क्या हो सकता है। तो जब पढ़ाई दोस्तों एक खेल या एक रोचक एक्टिविटी लगेगी तो बच्चों की किताबों में दिलचस्पी अपने आप बढ़ने लगेगी। तो बहुत से बच्चे पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं जब तक किताबें नहीं पढ़ोगे टीवी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे में किताब एक पनिशमेंट सी लगने लगती है दोस्तों। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कहानी की किताब ही स्टोरी बुक ही पसंद करे, कुछ बच्चों को साइंस की बुक्स, कुछ अंतरिक्ष से जुड़ी जो हो गई एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी किताबें, कोई क्रिकेट की, कोई कॉमिक्स, कोई रहस्य और रोमांच, कोई एनिमल्स की कहानियां पसंद आती हैं। तो अगर आपका बच्चा अपनी रुचि की किताब पढ़ता है तो यहीं से उनकी रीडिंग हैबिट की शुरुआत होती है। और बच्चे दोस्तों ज़्यादातर वही करते हैं जो वो घर में देखते हैं। अगर पेरेंट्स जो हैं खाली टाइम में मोबाइल देखते हैं तो बच्चे भी वही करेंगे। इसलिए रोज़ एक ऐसा समय तय करें जब घर के सभी लोग 15 से 20 मिनट कोई बुक, मैगज़ीन या अखबार पढ़ें और इससे बच्चे में जो है एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। और दोस्तों जैसे कि बताया कि जैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों से सिर्फ ये पूछते हैं कि कितने पेज पढ़े, इसकी बजाय उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जैसे कि इस कहानी में सबसे अच्छा किरदार कौन सा था, अगर तुम होते तो क्या करते, तुम्हें सबसे मज़ेदार हिस्सा कौन सा लगा। तो ऐसे में बच्चे की जो है वो कल्पना शक्ति जो उसकी हो गई, भाषा और सोचने की क्षमता बढ़ती है और उसे महसूस होता है कि किताब पढ़ने के साथ सोचने और महसूस करने का माध्यम भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे और बुक पढ़ने को एक इंजॉयबल फैमिली एक्टिविटी के तरह लेंगे। चलिए अब एक ये गाना जो है भरत दवार जो हैं डावर जो हैं फरीदाबाद से, उनकी उस पर बजा रहा हूँ, सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब इस अगले गाने के साथ मुझे यानी अमित दुआ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।